0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की।

0: दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। सवेर दे 6:05 होए ने ज्ञान अमृत।

0: जो कम मिठा बोलन नाल हो सकता है वो तलवार दी तार नाल नहीं हो सकता।
1: ईसी ज्ञान अमृत आओ सरवण कर दिया भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

सच्ची परमात्मा जे हा ना कोई दाता है ते ना कोई मेहरबान हुंदा है। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो तुसी सर्वण कर रहे हो भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: पत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राममन्दिरदानवञ्चनप्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परम् उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्यसचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्टजनाः निगडिताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुख चर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्यमहाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्ड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। आगामिदिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने जी मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे 6 दिन दौरे ते ने। ग्रैव अते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है सहकारी लहर सुधारा डिजिटाइजेशन अते पेशेवर प्रबंधा राही विस्तार ते एक नवे गेड़ विच दाखल हो रही है। यूनिवर्सिटियां अते कालजा ले 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबले 2024-25 लई इनाम वंड समारोह आज नवी दिल्ली विच आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान दे कब्जे वाले जम्मू कश्मीर विच चल रहे विरोधी प्रदर्शन विचकार उत्थों दे लोकां ने भारत सरकार तो मदद दी अपील की थी। पंजाब सरकार वालों ऑनलाइन NRI मिलनी 8 जुलाई नूं होवेगी। चोन कमीशन दे डिप्टी चोन कमीशन पानु प्रकाश येतुरु अते पंजाब दे मुख चोन अधिकारी आनंदिता मित्रा ने कल विशेष तिबर सोध SIR 2026 तहत घर घर जाके गणना फार्मा की वंड अते वापस प्राप्ति प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए मोहाली विच एक मीटिंग की। पंजाब ते चंडीगढ़ मनुखी अधिकार कमीशन ने चंडीगढ़ के सन्नती खेतर विच एक इमारत ढहन की घटना च 2 व्यक्तियों की मौत के मामले विच डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ तो रिपोर्ट मंगी है। मौसम विभाग ने 2 दिन दौरा पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबियां विच भारी मीह दी पेशनगोई कीती अते मर्दा दे अंडर 18 हाकी टीम लई 11 दिन दा राष्ट्रीय कोचिंग कैंप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे कैंपस विच 17 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इस अन हुन तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਰੀਮਾ ਗੁਗਲਾਨੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9। भारत ने अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। देश से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इंडोनेशिया के परिसर संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की समाचार कक्ष से। मैं मनोज।
3: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार

0: व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। वी आर
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
3: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित

0: काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद। महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे,

0: आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट सदस्य घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो इन जकार्ता टुडे टू प्रोवाइड फ्रेश मोमेंटम टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Amit Shah says cooperation ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. His iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic from the India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
4: We will be doing a lot of understandings and agreements.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाकार्ता विच इंडोनेशिया दे राष्ट्रपति प्रवाबो सोबियांतो नाल वफद पदरी गलबात करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 सालों विच लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन विच नवी ऊर्जा भरी है। श्री राम जन्म भूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सकत्र चंपत राय और ट्रस्ट मैंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के अस्तीफे प्रवान कर ले गए ने। कृष्ण मोहन नू अंतरिम जनरल सकत्र नियुक्त किया गया है। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जुती उद्योग की बरामद लगभग 4.5 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर विच प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिंदिया धमकी दी है कि जेकर उन्हां दियां मंगां पूरियां नहीं हुंदियां तां वह 9 जुलाई नूं सख्त अते फैसला कुन जवाब देणगे। 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबलियां 2024-25 विच पंजाब दे 2 अते हरियाणा दे 1 विद्यक अदारे नूं जेतू ऐलान किया गया है। इनाम वंड समारोह अज नवी दिल्ली विच आयोजित किया जाएगा। पंजाब सरकार वालों ऑनलाइन NRI मिलनी भलके 8 जुलाई नूं होवेगी। मौसम विभाग ने 2 दिन दौरान पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत उत्तरी राज्यों विच भारी मीह की पेशनगोई की है। भारत ने अंडर 20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप विच शानदार प्रदर्शन करदियां सोने के 4 तमगियां समेत कुल 20 तमगे जीते ने। स्पेन ते बेल्जियम दियां टीमां विच फीफा फुटबॉल विश्व कप दे क्वार्टर फाइनल्स विच पहुंच गईयां ने। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
3: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली।

बिल्कुल जी, इना खूबसूरत रंगा नू, मोहब्बत दे रंगा नू जदों सुरां दे नाल मिलाया जांदा है ना, तां जिहे सदाबहार नगमे जिहड़े ने ओह जन्म लैंदे ने। ते इस फिल्म दे हर नगमे दे नाल एक खूबसूरत छाप जिहड़ी ओह दिलां ते रह जांदी इस प्यारी जिही फिल्म दी।

दोस्तों, एक संयुक्त परिवार दी कहानी, ये फिल्म दो रास्ते, भावनात्मक कहानी जिस विच प्यार, त्याग, परिवारिक एकता, रिश्तियां दी अहमियत नूं दर्शाया गया। गलत फहमियां ते लालच कारण परिवार विच दूरियां पैदा हो जांदियां ने, पर अंत दे विच प्यार, विश्वास ते संस्कार सब नूं मुड़ इकट्ठा करन दा संदेश जिहड़ा ओह फिल्म दिंदी है। ते इसे दे नाल फिल्म जिहड़ी अपने अंतली मोड़ तक भी आउंदी है। ते कहिंदी है, जिंदगी दे विच हर वेले खुशियां नहीं हुंदियां, कई बारी हालात इंसान दी परख भी लैंदियां ने। अजे ही एहसासां नूं बयान करदा फिल्म दा ओह गीत जिहड़ा कहिंदा है कि कहानी नसीबां दे भी आ जांदी है।

रंग समाए ने अल्फाजा नाल सुरां नूं पिरोता ते गज़लां होंद विच आ गईआं। दिलों निकलती हर आ एक खूबसूरत सदा बन गई। ते आओ सुनदे आं अजिही ही एक होर खूबसूरत ते प्यारी जिही गज़ल जिहड़ी जिंदगी दे सच नूं हालातां नूं चेहरियां तों देख के खूब खूब बयान करती है।

0: बिल्कुल जी, रिश्तियाँ दी खूबसूरती एवी है कि कई बार उन्हें लिए शब्द नहीं मिलते, कई बार उन्होंने बयान करना आसान नहीं होंदा। कुछ रिश्तियाँ नाल दिल जुड़ते ने, कुछ रिश्तियाँ नाल यादा जुड़िया होंदिया ने, ते कुछ रिश्ते एहसासा दे होंदे ने। इन्हां ही नाजुक एहसासा जज्बाता नू अपने अंदर लबरेज कर लैंदियां ने यह गज़लां, ते दिल दे करीब हो जांदियां ने। खैर, अज दे इस प्रोग्राम दे विच बस इन्ना ही। हुणे तुसी सुन रही सी गज़लां मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हैल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 10 बजे ने, हुन पेश ने मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता विच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो नाल वफद पदरी गलबात करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 साल विच लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन के नवी ऊर्जा भरी है। श्री राम जन्म भूमि मंदिर ट्रस्ट ने जनरल सकत्तर चंपत राय अते ट्रस्ट मैंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा दे अस्तीफे प्रवान कर ले ने। कृष्ण मोहन नू अंतरिम जनरल सकत्तर नियुक्त किया गया है। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत दे चमड़ा अते जुत्ती उद्योग की बरामद लगभग 4.5 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर विच प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान नू 48 घंटिया का अल्टीमेटम दिंदिया धमकी दिती है कि जेकर उन्हां दीआं मंगां पूरियां नहीं हुंदियां तां उह 9 जुलाई नू सख्त अतले फैसलाकुन जवाब देणगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबलियां 2024-25 विच पंजाब दे 2 अते हरियाणा दे 1 विद्यक अदारे नू जेती ऐलानिया गया है। इनाम वंड समारोह अज नवी दिल्ली विच आयोजित किया जाएगा। पंजाब सरकार वालों ऑनलाइन NRI मिलनी भलके 8 जुलाई नू होवेगी। मौसम विभाग ने 2 दिनों दौरान पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत उत्तरी राज्यों विच भारी मीह पैण की पेशनगोई की है। भारत ने अंडर 20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप विच शानदार प्रदर्शन करदियां सोने के 4 तमगियां समेत कुल 20 तमगे जीते ने। ते स्पेन ते बेल्जियम दियां टीमां फीफा फुटबॉल कप, जी हाँ, फीफा विश्व कप दे क्वार्टर फाइनल्स दे विच पहुंच गईयां ने। ए सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हैलो फरमाइश, इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
2: लैलो छोले बेनाले ससानू हां मंगदियां पिछों रोंदियां कंदां दे ओले।
3: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लैके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख वख रूप ने जन्म तो लैके अंत समय तक जिन्हां विच

0: प्रोग्राम शुरू हो गया जी। हैलो फरमाइश से साढ़े अज के प्रोग्राम दे विच शामिल होने जा रहे हैं साढ़े अज की पहली कॉलर। हैलो,
1: कोशिश करो कि कोई आपसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे, रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसा निभाओ कि जिंदगी भर उस रिश्ते की डोर न टूटे। रुपिंदर जी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: बीपीओ कोट, हाँ जी, बीपीओ कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो मिंटू चंदेर जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाड़ा प्रोग्राम दे विच।
1: जी शुक्रिया, तुहाड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है।
0: शुक्रिया जी। स्वागत हो गया। मौसम जिहड़ा है वह मिजाज भी बदल रहा है, कदे सानू बरसात दे जांदा है, कदे बहुत ज्यादा हुमस दे जांदा है।
1: हाँ जी बिल्कुल जी, आतां कल शामी भी बहुत हुमस सी क्योंकि मेरा पिंड तुहाड़े स्टूडियो तो 7 किलोमीटर दूरी ते है, कैंट दे नाल ही है, तलन साहिब दे नाल ही पिंड है मेरा
0: जी।
1: और बस हुमस अज सुबह भी इतनी है, कोई इतनी बदलवाई नहीं है जी, थोड़ा जा जिदा थोड़ी बात बदलवाई है पर हुमस ज्यादा है।
0: हुमस ज्यादा है ते सो ये गीत ही ने जिहड़े ठंडक पहुंचा देंदे ने, ठंडी हवा दा एहसास दिला देंदे ने, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आकाशवाणी नाल काफी काफी समय तो जुड़े हुए हैं और अक्सर ही तुहाडे प्रोग्राम सुनते रहीदा और अच्छे लगदे ने, बहुत अच्छा प्रोग्राम तुसीं पेश करदे हो सारे जणे।
0: चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते दसो हुण प्रोग्राम दे विच गीत केड़ा शामिल कर लिए।
1: हाँ जी रुपिंदर जी, तुसीं गाना सुना दिओ, अभिलाषा मूवी दा गाना है रफी साहब दे वार विच
0: जी।
1: वादियां मेरा दामन।
0: ठीक है जी, प्रोग्राम दे विच फोन करन दे लई शुक्रिया
1: जी, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: लो जी, प्रोग्राम चल रहा है उना नगमिया दा जिहड़ी तुसी ही फरमाइश करने ने ते साडे कोल पहुंच गए ने अज दी अगली फरमाइश करता। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन पहुंचे ने ते केड़ी जगह तो आए ने?
1: मैडम जी, पर साबू बना से भजन सिंह।
0: भजन सिंह,
1: हाँ जी,
0: ठीक है भजन सिंह जी। फिर आज दे प्रोग्राम दे विच गीत केड़ा सुनोगे?
1: मैडम जी, शमशा बेगम दी आवाज
0: जी। गीत दे बोल भी दस दियो।
1: जागो नगरी
0: जी,
1: हाँ जी।
0: हाँ, ते फिल्म दा नाम?
1: सीआईडी फिल्म दे
0: जी, सीआईडी फिल्म दे विचों सुनोगे?
1: हाँ जी,
0: ठीक है जी, जरूर सुनावांगी। प्रोग्राम दे विच तुहाडी पसंद दा गीत शमशाद बेगम होना दी आवाज़ दे विच आ रहा जी तुहाडी रेडियो सेट ते या जिहड़े माध्यम दे राहीं तुसी साडा प्रोग्राम सुन रहे हो। कॉल करन दे लई शुक्रिया। लो जी, शमशाद बेगम होना दी आवाज़ दे विच इन्हां ने सुनना है सी आई डी फिल्म दे विचों गीत। ते लो फिर आपां सारे भी सुनदे आ नाल।

0: लो जी, तुहाडी फरमाइशां दा सफर चल रहा है।
1: जी हाँ, तुहाडी फरमाइश दे गीतां दा सफर चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। हैलो फरमाइश ते अगली हैलो, आओ सुनते हैं किना दी है। हैलो,
2: रुपिंदर बहन जी, सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी।
2: मैं जी चंद्रपान डल बोलदा, कंध वाला अमरकोट, नेड़े हबोर मंडी, जिला फाजिलका।
1: वाह जी वाह, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी तुहाडा।
2: जी बहन जी, 52 साल हो गए आकाशवाणी नाल जुड़े नूं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, 52 साल।
2: रुपिंदर बहन जी, सुखजीत बहन जी सुनते हो तो उन्होंने मेरे हाथ जोड़ के सत श्री अकाल।
1: वाह जी वाह, बिल्कुल पहुंच गई होनी है, बिल्कुल सुन रहे होंगे।
2: हाँ
1: उन्होंने पता है
2: जी,
1: मेरे स्रोते मैनू हमेशा ही सराहुंदे ने, प्यार करते ने, इस करके वो भी जुड़े रहते ने।
2: बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते सी, बहुत ही बढ़िया। अजकल तो सेवा मुक्त हो गए ना।

0: जी
1: हाँ जी
0: बिल्कुल जी, पर रेडियो उन्हां दियां जिहड़े सारिया दे दिलां विच उन्हां दी थां है ना, वो हमेशा ली बना गया है ना।
1: हाँ जी, बहुत वधिया बहन जी, तुसीं प्रोग्राम कर रहे, अज पहली बारी गल हुई तुहाड़े नाल, अज
0: जी
1: रीति दी गोली भी नहीं खानी पैनी, बड़ी इन्नी खुशी हो गई।
0: वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, ते बिल्कुल तुहाडा नमस्कार उन्हां तक भी पहुंचावांगे। दसो जी प्रोग्राम दे विच गीत केड़ा पहुंचा दिए।
1: ठीक है, तो मोहम्मद रफी का सुना दो जी, तुम
0: जी
1: उन्हीं
0: मोहम्मद
1: शाम
0: रफ,
1: उनका ख्याल आ गया।
0: ठीक है जी बिल्कुल जी, ये सुना रहे हैं, कॉल करने के लिए शुक्रिया
1: धन्यवाद भेने।
0: जी। बिल्कुल जी, साडी पुराने पेशकर्तावां नूं सारे ही याद कर देने, ते बिल्कुल रेडियो जेड़ा है वो बहुत अजीज़ लोकां नाल तुहानू जोड़ दिंदा है, तुहानू रखदा है, ते तुसी भी सारे अजीज़ बन जांदे हो जदों दे तुसी सुन रहे हो रेडियो, जदों दे रेडियो नूं अपना के बैठे हो, इस नाल प्यार करदे हो, ते बिल्कुल रेडियो भी तुहाडे नाल ओना ही प्यार करदा है। सो ये वाले प्रोग्राम्स जेड़े ने खास करके बनाए जाते ने क्या ताँ कि तुहाड़ी आवाज़ भी पहुँच सके, ते साड़े होर प्रोग्रामा दे जरिए असी तुहाड़िया जिहड़ियां पसंदा ने वह भी सुन सकीए, ते अगों दे ध्यान भी रख सकीए कि तुसी इन्हां सारे गीतां नाल गूढ़ा प्यार रखते हो ते इन्हां नूं सुनना चाहते हो। खैर प्रोग्राम दे विच आओ इन्हां दा फरमाइश कीता गीत सुनते हैं।

0: To watch more, log on to www.
1: लो जी, ऐसे गीत दे नाल ही आज दा ई प्रोग्राम हैलो फरमाइश हुणे इत्थे ही खत्म हुंदा ए। हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम हैलो फरमाइश मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 11 बज रहे ने। हुण तो कुछ ही पला बाद तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा सहयोग, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन और खनिज तथा इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners.
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो

प्रोग्राम चल रहे हैं जी तमक जलंधर पैंदी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो एक छोटी जी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि एक टाइम ते एक जना ही मैसेज करया करो, दो दो तीन तीन मैसेजेस करन दा ते कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब एक बारी तुहाडी फरमाइश पूरी हो गई तो दूसरी बारी अगलियां दी फरमाइश पूरी करन दी वारी हुंदी है। सो आई होप साढ़े सुनने वाले बहुत सियाने ने तो इस गल नूं समझ भी गए होणगे। तो अगे तो असी करना की है कि एक प्रोग्राम विच अपने एक ही मैसेज नूं कन्वे सानूं करना है, तो असी तुहाडी फरमाइश ऑलरेडी पूरी कर भी चुके हुए हैं। सो हुण वेला है जी अगली फरमाइश पढ़न दा। तो अगली फरमाइश जिहड़ी आई है जी सानूं पंचकुला सैक्टर 9 तों आई है, तो ये फरमाइश सानूं भेजी है जी आशू चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भाविक ठींगरा होरां वल्लों। तो इन्हां ने फरमाइश की ਇਹ ਜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਨੇੜੇ

0: गाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 12:05 बज रहे ने। आओ सुनते हैं पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार। प्रोग्राम वस्ते वेड़े दे विच सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। गुरप्रीत वालों प्यार भरी नमस्कार करो, कबूल ते मेरे नाल ने।
1: मैं प्रभजोत, गुरप्रीत दे नाल जी, नमस्कार। ते की हाल चाल है गुरप्रीत?
0: बहुत वधिया है। जदों असीं बदल रहे मौसम दी गल करदे आं ते वधिया हो जांदा है, लेकिन जदों फिर दोबारा मौसम बदल जांदा है फिर थोड़ा जिहा मन खराब हुंदा है कि गर्मी जिहड़ी है ना उह गई नहीं है, लेकिन बरसात किते ना किते आउणी शुरू हो गई है।
1: बिल्कुल जी, देखो मानसून आ चुकियां ने, बरसातां शुरू हो चुकियां ने, पर इहदे विच असीं कुछ अपना ख्याल रखना है।
0: बिल्कुल, ख्याल भी रखना है और नाल दी नाल जदों असीं गल करदे आं ना इहो जिहियां जिहड़ियां आउण वाले समय दे विच असीं कुदरती आफतावां कह लईए या मुश्किलां कह लईए, उहनां दे लई सानूं पहलां तों ही किते ना किते कुछ ना कुछ संजो के संभाल के रखणा पैंदा है। चाहे असीं पैसे दी गल कर लईए, चाहे असीं अपणियां कदरां कीमतां दी गल कर लईए, चाहे सोच विचार दी गल कर लईए।
1: बिल्कुल जी, अज असीं गल करांगे बचत दे
0: जी। बिल्कुल,
1: बचत जिवें तुसीं कहा कि किसी तरां दी वी बचत।
0: हांजी,
1: चलो गल शुरू करदे आं कि पैसे दी बचत।
0: हांजी हांजी,
1: सानूं थोड़ी थोड़ी चीज़ां सीख लैनियाँ चाहिए ने कि बचत असी किस तरह करनी है। देखो घर दे विच शुरू दे विच सानू चाहिए कि असी पहले महीने जो तनख्वाह आती है,
0: हाँ जी,
1: जिवें रसोई का आना ही आना खर्चा,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, और राशन पानी का खर्चा हो गया, गैस का खर्चा हो गया, कोई बिजली का बिल आ गया, बच्चों की फीस आ गई है ना, ये सारा कुछ करके उस तो बाद असी बचत जड़ी करनी है, उन्हों असी कहने हैं बचत।
0: बचत करना, बिल्कुल, बहुत सोहने तरीके दे नाल तुसी डिस्क्राइब किया है कि बचत असल दे विच असी अपने सारे खर्चे करन तो बाद सोचनी हुंदी है। जदों असी पैसे साडे कोल आउंदे ने ते मान लो साडे कोल 10,000 रुपया है, उहदे विच 500 रुपया घटदा है, कई बार 500 रुपया इकट्ठा करना इन्ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह सच्ची ही साडे बस तो बहर हो जाता है। लेकिन उस 500 रुपये नूं जेकर असी बाजार लेके जाइए फिर असी सोचते हैं कि इदां दे 500 दे होर नोट विच ऐड हो जाण।
1: सो जी गल इह है कि बचत जिहड़ी है वो बड़ी सोच समझ के करनी होंदी है, क्योंकि देखो उस कीती हुई बचत दे विच्चों तुहानूं बहुत सारे खर्चे जिहड़े इस तरह के आ जाते हैं। जिवें जे असीं दफ्तरां दे विच काम करदे आं तो उत्थे कोई ना कोई लोड़वंद तुहाडे कोल आ जाता है,
0: बिल्कुल,
1: जां उत्थे कोई इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन करनी पै जाती है तुहानूं, वह भी असीं उसे बचत तों करनी है, ठीक है ना, वह बचत करनी बहुत जरूरी है। फिर सानूं किसी की मदद करनी है जां सानूं असीं कोई घर दे विच कोई मेहमान आ जाता है उन्हूं कुछ देना हुंदा है,
0: बिल्कुल,
1: वह भी बचत दे विच्चों ही देना हुंदा है,
0: बिल्कुल।
1: ते इस तरह दी बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां ने जिन्हां दे विच्चों असीं बचत कीती हुई जिहड़ा पैसा है
0: वह
1: जिहड़ा असीं उहदे ते खर्च कर सकदे
0: हां। बिल्कुल, और बचत और बजट ये दो चीज़ां बहुत ही ज़्यादा मिलियां जुलियां ने जेकर असीं बचत करनी है। तो बहुत सोहणे तरीके दे नाल प्रभजोत मैम तुसीं डिस्क्राइब किया है कि बचत जिहड़ी है तुहाडे खर्चे नूं करन तों बाद ते उह जिहड़ा बजट तुसीं कुछ ही सैकिंड्स दे विच बना दित्ता है ना, उसने सच्ची ही जरूर सब नूं दस्या होएगा कि यह नहीं है कि असी आंदे ही पैसे बचत शुरू कर देनी, असी अपने खर्चे करके फिर उस तो बाद देखना जो पैसे साडे कोल बचते ने उन्हां नूं फालतू खर्चियां दे विच ना करके
1: बिल्कुल
0: उन्हों बचत वाल लेके जाना।
1: बिल्कुल, तुसीं बहुत वधिया गल कीती है कि फालतू फजूल खर्ची जिवें असीं कहिंदे आ। देखो गुरप्रीत, कई वारी सानूं लोड भी नहीं हुंदी और असीं एवें देखा देखी बाजार चले गए, बाजार जाके असीं एवें ही सूट देखण लग गए जां कुछ होर चीज़ां देखण लग गए, सानूं लोड इक चीज़ दी हुंदी है, असीं लैके चार चीज़ां आ जांदे आ और घर आके सोचदे आ कि लो जी साडा तां बजट हिल गया। और देखो बजट जदों हिल गया फिर तुहानूं बड़ियां प्रॉब्लम जिहड़ियां ने ओह खड़ियां हो जांदियां ने।
0: बिल्कुल, इस बचत दे नाल असीं इक होर बहुत सोहणा काम कर सकदे हां कि असीं कुदरत दी संभाल भी कर सकदे हां
1: जी।
0: जेकर असीं पैसियां दी बचत करदे हां ते असीं कुछ इहो जिहियां कारगुजारियां भी कर सकदे हां जिथे इक पासे तुसीं गल कीती है समाज सेवा दी किसे दी मदद करन दी, उत्थे ही असीं कुदरत नाल भी जिहड़ा है कुछ ना कुछ उहनूं असीं सैटिस्फाई कर सकदे हां कि असीं तुहाडे लई भी कुछ कर रहे हां तां कि सानूं कुदरत अपनी करोपी ना दिखाए।
1: बिल्कुल,
0: असीं पेड़ पौधे लगाउण दे लई जरूरी नहीं है कि असीं जिहड़े सरकारी तरीके दे नाल साडे तक बूटे पौधे पहुँचते ने उह इहनां खास दिनां दे विच जिहड़े असीं कहिंदे आ कि वन महोत्सव हफ्ता मना रहे हां उहनां दे विच वंड के असीं उहनां नूं अग्गे तों अग्गे लै के जाईए, असीं खुद भी अपनी बचत दे विच्चों पैसे जिहड़े ने उह इकट्ठे करके पेड़ पौधे जिहड़े ने उहनां नूं लगाउण दे लई काम कर सकदे हां।
1: बिल्कुल जी, कोई ना कोई रुख जिहड़ा असीं लगा सकदे हां। और देखो जदों तुसीं जांदे हो ना किसी भी वन दे विच किसी भी रुखां दे कोल
0: ते
1: बहुत सारी तुहानूं इदां दी चीज़ां मिलदियां ने और तुहानूं लगदा हुंदा है कि वाकई जिहड़े पत्ते ने उह तुहाडे नाल गल्लां कर रहे ने।
0: बिल्कुल,
1: कुछ रुख इहो जिहे हुंदे ने सचमुच हुंदे ने जिन्हां दी नाल तुहानूं खड़े हो के उहनां दे कोल तुहाडे तुहाडा दिल करदा है कि उहनां नाल कुछ गल्लां जिहड़ियां कीतियां जाण, अपने मन दीआं गल्लां।
0: बिल्कुल,
1: और उह ਕਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ।
0: बिल्कुल, असीं इह चीज़ गार्डन दे विच जां पार्क दे विच जाके भी देख सकदे हां कि उत्थे जिहड़े दरखत लगे हुंदे ने कुछ दरखत इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां दे उपर बहुत सारे पंछी बैठे हुए हुंदे ने। तुहाडा इशारा बिल्कुल सही है, तुहाडी गल्लबात बिल्कुल सही है, और कुछ रुख इहो जिहे

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 1 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और

0: इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 वज रहे ने। आओ हुण तुहानू साडे दिन विच बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए।

0: की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकत दारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक तआवुन और सनती इश्तराक को वसत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकत दारी आगे बढ़ रही है जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकत दारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमयाब जमीनी मकनातीस में नई शराकत दारी का आगाज कर रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निजाम से मजबूत हो जाएगी जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 साल से भी ज्यादा कदीम परमबनन मंदिर के तहफुजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर देवांतरा के तआवुन को याद किया और कहा कि उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर के नजरियात से गहरे तौर पर मुतासिर था।
1: हम दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बितंग अदिपुरना से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकत दारी को मुस्तकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वजीर आजम के तआवुन के एतराफ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरिया इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बितंग अदिपुरना से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकत दारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस ए वाई कोकजे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरस कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे।

0: इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों को आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल ड्यूरन कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुबेई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफान बारिश हुई और तेज हवाएं चली। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने बताया है कि शिमाल मगरबी मानसून के शिमाली बहिरे अरब, गुजरात के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में अगले 3 दिन के अंदर मजीद आगे बढ़ने के हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज शदीद बारिश होगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात नोटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अलावामी मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बितंग आदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमों को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार तो बाद एक बार फिर तो हाजिर है प्रोग्राम फौजी वीरा ली लेके। प्रोग्राम अगे तोरदिया ते आओ सुनदिया प्रोग्राम दा अगला गीत फिल्म एक्शन रीप्ले चो लिया गया। आवाज़ा दलेर मेहंदी ते रिचा शर्मा दियां।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को

0: नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया

0: व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्य

0: कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडिया में 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे टाइम आ रहे ने, आओ सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च गिरधारी लाल ते साथी माता दीयां पेटां सुनवाणगे। आओ सुनते हैं प्रोग्राम दी पहली पेट।

दोस्तों क्लेयरकंठ की आवाज़ में तुसी सुन रहे से खूबसूरत गीत इंतजार। डीटीएच की पंजाबी प्रसारण सेवा से आरजे तजिंदर सिंह को तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। दोस्तों तुसी भी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अपनी फरमाइश के गीत सुनने लई सानू चिट्ठियां भेज सकते हो। चिट्ठियां भेजन लई साडा पता है प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां मार्फत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर। दोस्तों तुसी सानू वध तों वध चिट्ठियां भेजो, असी पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं असी जरूर पूरा करिए।

0: सुरेंद्र छिंदा दी आवाज में तुसीं सुन रहे सी खूबसूरत गीत पुत जट्टा दे। दोस्तों 7 जुलाई 1999 नूं महाराजा रणजीत सिंह ने 25 साल की उम्र च अपनी सस राणी सदा कौर की रणनीतिक प्रतिभा के समर्थन नाल लाहौर शहर ते कब्जा कर लिया सी। इस इतिहासिक जित ने उन्हां नूं पंजाब नूं एकजुट करन अते बाद विच 1801 च अपने आप नूं पंजाब दा महाराजा ऐलान करन दी मंजूरी दित्ती सी। दोस्तों प्रोग्राम की अगली फरमाइश ले सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल हसमुख जिंदल ते पूरा ही खुशदिल परिवार। इस तरह सहारनपुर तो सुरेश नारंग ते आशा नारंग। मुलापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा राज शर्मा मंजू शर्मा आशीष शर्मा बिट्टू जैन दीपक जैन। पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन अरुणा जैन अक्षय जैन गौतम जैन रसगुन्ना जैन नगीना जैन अरिहंत जैन सुरभी जैन ते संजीव जैन। इसे तरह मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनीश बजाज। श्रीनगर तो बजरंग लाल शर्मा जगमोहन सिंह अरनेजा दिनेश कुमार शर्मा नरेश कुमार शर्मा। दोस्तों ने सारे की फरमाइश से सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।
1: जान जान बंगा शेर जान जान बंगा शेर।

अर्जुन गवाहनकर, आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर तो वैशाली शैलेंश गवाहनकर, सुमित गवाहनकर ते ध्वनि गवाहनकर। इस नाल ही पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, गिदड़बाह तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी। दोस्तों सारे की फरमाइश से सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अज इंडोनेशिया दे सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदपूर्णा नाल सम्मानित कीता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों इंडोनेशिया दे राष्ट्रपति पुबावो सुअंबियतो नाल वफद पदरी गलबात दोवां नेतावां ने आपसी हित दे खेतरां विच सहयोग वधाउण लई कई समझौतियां ते दस्तखत कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच डुरंड कप टूर्नामेंट 2026 दियां ट्रॉफियां दा उद्घाटन कीता अते उन्हां नूं रवाना कीता। श्री अमरनाथ जी यात्रा दा छेवां जत्था अज सवेरे जम्मू तों सख्त सुरक्षा हेठां रवाना होया। यूनिवर्सिटी अते कालजां दे 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबले 2024-25 लई इनाम वंड समारोह अज नवीं दिल्ली विच

सुन रहे सी प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत तहत कुछ पंजाबी गीत असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शाम के 4:30 बज रहे ने। आओ हुण तुहानू लै चलदे हैं श्री दरबार साहब अमृतसर, जित्थों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण कर

ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ये फरमान पंचम गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वालों राग सूही विच उचारित है। साहिब फरमाउंदे ने कि हे मेरे मालिक प्रभु, मैं तेरियां बख्शिशां दी कदर नहीं सा जानदा। मैनू निमाणे प्राणी नूं आत्मिक जीवन दी सूझ नहीं सी। मैं ब्रह्म विचार सिमरन ते नेक अमलां तों अणजाण सा। प्रभु तेरी मेहर नाल मैनू सब तों वड्डा ते विशाल गुरु नानक मिल गया, जिसने मेरी लाज रखी ते मैनू तेरे चरण कमलां नाल जोड़ दिता है। ये सब इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने संतां दी अपने प्यारियां दी आप पैज रखता है। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक का पाओ किच नाही, जम नहीं आवै नेरे। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: मेरे राम राये, तुम संता का संत तेरे, तेरे सेवक काओ पाओ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे। इस शब्द का गायन किया सिपाही बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। जिहड़े प्राणी उस मालक दे प्रेम रंग विच रंगे रहिंदे ने, उन्हां दे जम्मण मरण दा गेड़ ते दुख समाप्त हो जांदा है, ते उस परमात्मा नाल अगम्मी मेल स्थापित हो जांदा है। पर इसलिए जरूरी है कि उस परवरदिगार दे चरणां च बेनती की जाए, जोदड़ी की जाए, ताही परमात्मा तुट के किरपा करदा है। सेवक सेवै करह अरदास, तू आपे मेल बहाल है पास। गुरबाणी फलसफे मुताबक गुरसिख ने हर दुख सुख विच अकाल पुरख दे सन्मुख एकागरचित हो के अरदास करनी है। सुनदिया डॉक्टर जसवंत सिंह होरां पासों वार्ता गुरबाणी विच अरदास दा संकल्प।
1: अरदास शब्द दीयां जड़ां फारसी अते संस्कृत भाषा विच पईयां होईयां हन, पर हुण इह शब्द अपनी विलक्षण अते सुतंत्र होंद बना चुका है। अरदास शब्द सुनदिया पढ़दिया साडा ध्यान सिख धर्म विच हर धार्मिक संस्कार वेले जां किसे कारज दी शुरुआत अते संपूर्णता तों बाद कीती जाण वाली अरदास वल जांदा है। वख वख धर्मां विच अरदास लई प्रार्थना, प्रेयर, दुआ आदि शब्द वरते जाते हैं। पंजाबी विच ही इस दे समान अर्थी शब्द बेनती, जोदड़ी, बिनय, अरजोई आदि देखे जा सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अरदास लई अरदासे, बिनौ, बेनंतिया, बेनंती, बेनती शब्द वरते गए हैं। अरदास अपने तो उच्ची शक्ति अगे कीती जाती है, उस तो कुछ मंगन लई, भुलां बख्शाउण लई, मुक्ति प्राप्ति लई, जां आपो अपनी मनो अवस्था अनुसार गैबी शक्ति नाल वार्तालाप कीता जांदा है। अरदास असल विच हुंदी ही उदों है जदों आत्मा पूरी तरह जागृत हो जावे, क्योंकि इस तों पहलां अरदास हो ही नहीं सकती। धार्मिक समाज विच जो प्रचलित अरदास दा रूप है, उस विच ज़्यादातर तां परमात्मा तों केवल दुनियावी मंगां ही मंगियां जांदियां हन। परमात्मा दी प्राप्ति नाल उस दा कोई वास्ता नहीं हुंदा। अजोका मनुख दुनियावी चीज़ां विच लुप्त हो गया है, जिवें बच्चा खड़ौणियां तों अक के अपने आले दुआले माँ नूं लभदा है, इस तरह मन रूपी बच्चे नूं भी परमात्मा रूपी माँ चाहीदी है। जदों मनुख नूं इह सोझी आ जांदी है तां उह आप हुदरेपन नूं छड के अपना आपा किसी वड्डी शक्ति दे सपुरद करदा है।

कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरा आंगन। इस शब्द दा गायन कीता सी पाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान

0: लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर दो विस्फोट हुए। इनमें चार पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम के 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा, जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। जमाबंदी ते गिरदावरी संबंधी कानून बारे जानकारी देणगे एडवोकेट जसवंत कमल छाबड़ा। सूर पालन दे किते संबंधी जानकारी देणगे डॉक्टर रवदीप सिंह। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तो अलावा तुहाडे मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश कीती जाएगी। बिवेयर ऑफ साइबर फ्रॉड्स, वार्ताकार होणगे परविंदर सिंह। रात 7:50 ते SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस बारे एक विशेष रेडियो रिपोर्ट तुसी सुनोगे 7:50 ते। रात 8:00 प्रोग्राम पेश करांगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 प्रोग्राम होएगा खेल संसार। आज दे इस प्रोग्राम दे विच इंटरनेशनल पैरा आर्चर हरविंदर सिंह होर नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा सुर साधना। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे निनाद कुमार झा दा द्रुपद गायन राग मियां की मल्हार। रात 10:30 हिंदी फिल्मी गीतां दा आनंद माण सकोगे तुसी प्रोग्राम सरगम दे जरिए। ਸਵੇਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਮੂਹ ਗਾਨ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। पंजाब बीजेपी प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा केंद्र सरकार ने फिल्म सतलुज नूं OTT तों हटाउण बारे मामले की समीक्षा दे हुकम दित्ते। पंजाब के मुख चोण अफसर आनंदता मित्रा ने पटियाला ते बरनाला च BLOs नाल दुरव्यहार करन दे मामले दा गंभीर लिया नोटिस। जिला चोण अफसरां नूं BLOs की सुरक्षा यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अज वख-वख मुलाज़म जथेबंदियां दे मुद्दियां दे हल लई अहम मीटिंगां कीतियां। संबंधित विभागां नूं जायज मंगां दा हल करन दे निर्देश दित्ते। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा अते चंडीगढ़ विच अज तों 9 जुलाई तक भारी मीं पैण बारे येलो अलर्ट जारी कीता अते भारत ते इंग्लैंड दरमियान 5 2020 मैचां दी लड़ी दा तीजा मैच अज नोटिंगम च राती 10 बजे खेडिया जाएगा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स अते सूचना तकनालोजी मंत्रालय ने 3 मैंबरी समीक्षा कमेटी नूं पंजाबी फिल्म सतलुज नूं OTT प्लेटफॉर्म तों हटाए जाण दी जांच अते इस दी समीक्षा करन दे निर्देश दित्ते ने। पंजाब BJP प्रधान केवल सिंह ढिल्लों वल्लों इस बारे 6 जुलाई नूं भारत सरकार कोल कीती गई अपील ते कारवाई करदिआं इह निर्देश दित्ते गए ने। केंद्र सरकार दे इस फैसले दा स्वागत करदिआं केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब दा सिनेमा ते इस दे कलाकार लोकां दी आवाज़, इतिहास ते सभ्याचारक पछाण दे नुमाइंदे ने। उन्होंने कहा कि पंजाबी फिल्म जगत ते आम लोगों वालों सतलुज नूं OTT तो हटाए जाण दे तरीके नूं लैके गंभीर चिंतावां नूं देखदिआं इह मामला भारत सरकार दे ध्यान विच लिआंदा गिआ। उन्होंने भरोसा प्रगटाया कि कमेटी इस मामले की वेरवे समेत अते निरपक्ष समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि BJP पंजाब इस मामले विच सारे संबंधित पक्षों नाल सकारात्मक संवाद जारी रखेगी तां जो इस मामले का जल्द न्यायपूर्ण ते संतुलित हल यकीनी बनाया जा सके। पंजाब के मुख चोण अफसर आनंदता मित्रा ने कहा कि विशेष तीबर सोध SIR के काम च लगे बूथ लैवल अधिकारियों BLOs नाल किसी भी किस्म का दुरव्यहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दसिया कि पटियाला ते बरनाला जिले में BLOs नाल दुरव्यहार करने के मामले सामने आए हैं जिसका गंभीर नोटिस लिया गया। उन्होंने दसिया कि पटियाला चनंद नगर के एक निवासी वालों बूथ नंबर 113 के बूथ लैवल अफसर से उस समय हमला किया गया जदों BLO ने SIR प्रक्रिया संबंधित उस तो वेरवे मंगे। इस घटना तो बाद पुलिस ने हमला करने वाले व्यक्ति खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। श्रीमती मित्रा ने दसिया कि इस तरह बरनाला जिले के धनौला के बूथ नंबर 103 के BLO ते भी SIR संबंधी कामकाज दौरान माड़ी शब्दावली वरती गई अते हमला किया गया जिस संबंधी धनौला थाना विखे मामला दर्ज किया गया। मुख चोण अफसर ने सूबे के समूह जिला चोण अफसर हिदायत की है कि वह SIR दौरान BLOs की सुरक्षा को यकीनी बनाने। उन्होंने सूबे के समूह वोटरों भी अपील की है कि वह BLOs को पूरा सहयोग देन अते ये यकीनी बनाने कि इस तरह अणसुखावियां घटनावां ना वापरन। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अगवाई वाली कैबिनेट सब कमेटी ने अज वख-वख मुलाजम एसोसीएशन अते जथेबंदियां नुमाइंदियां नाल सीधी गलबात करन लई अहम मीटिंगां कीतियां। इन्हां मीटिंगां दौरान सौंपे गए मंग पत्रां की समीक्षा की गई अते मुलाजम जथेबंदियां वल्लों उठाईयां गईयां पेशेवर ते वित्तीय शिकायतां दे हल वास्ते विचार चर्चा भी की गई। वित्त मंत्री ने सिक्ख्या कामियां नाल विचार वटांदरा कीता। मीटिंग विच तनखाह निर्धारण बदलियां ते रेगुलर करन संबंधी मुद्दियां ते विस्थार नाल चर्चा कीती गई। उठाए गए मसलियां दा तुरंत नोटिस लैंदिआं वित्त मंत्री ने विभाग नूं इन्हां जायज़ मंगां दा तेजी नाल

0: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है, विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: श्री चौहान ने अज मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों नाल उप राष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन नूं कपाह उत्पादकता मिशन बारे भी जानकारी दी। उप राष्ट्रपति ने भारत के कपाह खेत्र नूं मजबूत करने लई मिशन की व्यापक कार्य योजना की शलाघा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उप राष्ट्रपति ने नवीनता नूं उत्साहित करने लई एक समाबद्ध प्रवानगी प्रणाली की लोड़ ते जोर दिता। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्सहैंडल @ARN जलंधर। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हरियाली वधाने लई एक पेड़ माँ के नाम मुहिम तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लाने के मिशन की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि यह मुहिम दिल्ली के चौगिरदे नूं बदलन वाले एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5,000 हैक्टेयर नूं जंगलात भूमि ऐलान के इस दिशा वल एक उसारू कदम चुकया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ते दिल्ली सरकार ने अगले 4 साल 6,300 हैक्टर ग्रीन रिज इलाके जंगलात भूमि में पूरी तरह विकसित करने ते इसकी सुरक्षा यकीनी बनाने का वादा किया है। उत्थे मौजूद पुरातत्व ढांचे भी सुरक्षित रखा जाएगा। गृहमंत्री ने कहा है कि सरकार यमुना नदी को साफ करने लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 129 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए गए ने। गृहमंत्री ने 300 इलैक्ट्रिक बसों की भी शुरुआत की, 3 नवे बस डिपुआ और 40 वाहन टैसटिंग केंद्रों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। केरला च वायनाड के मैपाडी कलाडी नेड़े एक सुरंग निर्माण वाले एक स्थान पर भारी बारिश तो बाद जमीन खिसकण कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन हेठां फसे 9 मजदूरों बचा लिया गया है। मैपाडी के सरकारी मैडिकल कॉलेज हस्पताल में दाखिल कराया गया है। 6 होर अजे भी लापता ने, उन्होंने मलबे हेठ फसे होने का खदशा है। जम्मू कश्मीर में अज सवेरे भारी मीह कारण डोडा जिले के थथरी इलाके बदल फटन कई घर दुकानों नुकसान पहुंचा है। साढ़े जम्मू वाले पत्रकार अनुसार बदल फटन किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने डोडा के डिप्टी कमिश्नर नाल गल की है ते जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों तुरंत राहत और सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए ने। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा ने एक महत्वपूर्ण मील पत्थर हासिल किया है। सालाना यात्रा के 5वें दिन अज पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की गिनती 1 लाख पार कर गई है। साढ़े पत्रकार अनुसार अज दोपहर बाद 3 बजे तक 20,537 श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थान के दर्शन किए। इस ही पहले 5 दिनों में पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल गिनती 1,06,316 हो गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा ते सहूलत नूं यकीनी बनाने लई सारे जरूरी प्रबंध किए गए ने। अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप दी टिप्पणियों तो बाद ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराग़ची ने वाशिंगटन नाल अंतम समझौते ते गलबात करन तो स्पष्ट तौर ते इनकार कर दिता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अराग़ची ने ईरान ते अमरीका विचकार हुए समझौता पत्र का हवाला देंदे कहा है कि ईरान उदों तक गलबात मुड़ शुरू नहीं करेगा जदों तक वाशिंगटन अपनियां वचनबद्धतावां दा सन्मान नहीं करदा। पहला राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका जां तां ईरान नाल समझौता करेगा जां काम खत्म करेगा। उन्होंने दावा किया कि जे लोड़ पई तो अमरीका ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकता है। ईरान ने इन टिप्पणियों की सख्त निंदा की है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड विचकार 5 20-20 मैचों की लड़ी का 3जा मैच अज रात नोटिंगम में खेडा जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम लड़ी में अपनी पहली जित पूरी वाह लाएगी। मेजबान इंग्लैंड ने शनिचरवार को मैनचेस्टर में खेडे गए दूजे 2020 मैच में भारत को 4 विकटों से हराया। पहला मैच मीह कारण रद्द हो गया। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का अज रात अटलांटा में राउंड ऑफ 16 के मैच में मिस्र मुकाबला होगा। बाद में एक होर राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्विट्जरलैंड ते कोलंबिया वैंकूवर च आमो सामने होंगे। पहला बेलजियम सिएटल में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अमरीका 4-1 हरा के टूरनामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। अंत में चोणवीं खबरें एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद में संबोधन करदे भारत इंडोनेशिया रणनीतिक भाईवाली होर मजबूत करने का सद्दा दिता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के टीचे

जी हाँ, ये जीना है अंगूर का दाना, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मीठा नहीं है, जबकि असी चाहते हैं ही हाँ कि सानू हर चीज़ मिठी मिले, हर चीज़ वधिया मिले, खट्टी बिल्कुल ना हो, और कौड़ी तो हरगिज़ होवे ही ना, कौड़ी चीज़ तो जिंदगी दे विच सानू चाहिदी नहीं, लेकिन जिंदगी साढ़े चाहन दे नाल नहीं चलती, जिंदगी अपना जड़ा इसका रंग है उस रंग दे नाल ही चलती है, और सब की जिंदगी इको तरह की तकरीबन कहिंदे हुंदी है। कहिंदे कि दुनिया दे विच इंसान का जड़ा सब तो वधिया दोस्त हैगा ना, वह इंसान आप खुद ही हैगा, कि साढ़े तो वधिया साडा दोस्त कोई होर हो ही नहीं सकता। जिन्ना भला असी अपने लिए मंग सकते हैं या जिन्ना भला असी अपने खुद के लिए चाह सकते हैं ना, उन्ना भला कोई होर साडे लिए चाह नहीं सकता, है ना। तो इस तरह कहिंदे ने कि जिंदगी दे विच जेकर साडा कोई सब तो वड्डा दुश्मन हैगा ना, वह भी असी आप खुद ही हैगे आ। जिन्ना नुकसान असी अपना कर सकते हैं ना, इन्ना नुकसान शायद ही कोई होर कर सके। तो इस करके अपने आप तो बचना बहुत जरूरी है। कहिंदे कि एक प्रार्थना रब नूं जरूर करनी चाहिए है कि भाई दुश्मनों तो बाहर के जड़े है उन्होंने तो मैं निबट लाँगा, लेकिन मैनू मेरे कोलों तू ही बचा सकता है, क्योंकि मैं अपने आप नूं अपने कोलों बचा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना जिन्ना नुकसान कर जाता वा इन्ना कोई होर नहीं करता, जबकि मैनू पता है कि मेरे लिए

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते। पर किते उन्हां ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: आकाशवाणी जलंधर ते तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। तो कहिंदे ने कि जिंदगी नूं जेकर हसीन बनाना होवे ना तो एक चीज़ जरूर मान लैनी चाहीदी है कि जेकर तुसीं परमात्मा दे विच विश्वास रखते हो, अध्यात्मिक हो, अक्सर वैसे बहुत सारे लोग ने जिहड़े रखते ही ने, रब नूं मनते ही ने, प्रार्थना करते ही ने, तो कहिंदे कि जरूर इस चीज़ नूं मन्निया करो कि जो भी दे रहा है ना परमात्मा उसनूं सत वचन समझ के मान लो कि जो दे रहा है ठीक दे रहा है, जो भी हो रहा वधिया हो रहा। लेकिन अक्सर इदा हुंदा नहीं, मतलब कई बार ऐसिया घटनावां या ऐसे हालात इंसान दे बन जाते हैं कि जदों रब दे नाल बहुत सारिया शिकायतां हो जांदियां ने, बहुत सारे गिले हो जाते हैं कि बई क्यों हो गया मेरे नाल, इदा क्यों हो गया, इन्ना दुख क्यों आ गया। लेकिन वो कहण नाल या सोचण नाल साडा दुख घट नहीं हो जाना, जेकर असीं उसनूं मन लांगे। तो सियाने कहिंदे ने कि शायद वो दुख दे विचों तुसीं छेती निकल सकते हो। जेकर तुसीं दुख तो निकल नहीं ना पा रहे तो कहिंदे दुख नूं ही अपना दोस्त बना लो, उस दे नाल ही जो भी तुहानूं तकलीफ है समझ लो कि इस दुख ने तुहाडा साथ देना है, चाहे उम्र भर देना है, लेकिन यह दुख तुहाडा साथ नहीं छड्डेगा। और उस दे नाल जदों दोस्ती पालोगे ना तो शायद वह दुख जिहड़ा तकलीफ तुहानूं घट देना शुरू कर देगा। क्योंकि जिहड़ा दोस्त हुंदा ना साडा, बेशक कहिंदे कि वो दोस्त साडे नाल गुस्सा भी करदा, गिला भी करदा, उच्ची भी बोलदा, कई तां गालां भी कढ दिंदे ने, लेकिन दोस्त जदों बोल रहा हुंदा ना तां फिर सानूं वो चीज़ां चुभदियां नहीं। इस तरह जेकर असीं दुख नूं भी अपना दोस्त बना लाँगे ना तो वह जिहड़ा भी दुख देगा ना शायद वह इन्ना ना चुभे। हो सकदा ऐ प्रैक्टिस करन वाली गल है, क्योंकि यह जिहड़ा गीत है ना यह भी सानूं यही सिखा रहा है कि भई जेकर दुख तुहाडा साथ नहीं छड रहा ना, जेकर तुहानूं लग रहा है कि मेरी जिंदगी दे विच ज़्यादा दुख ही दुख ने, तां फिर दुख नूं अपना दोस्त बना लो ते ओह दुख कटना आसान हो जाएगा। आओ फिर सुनदे हां।
4: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

जी हाँ, मरने से पहले जीना सीख ले। तो जिंदगी तो जड़ी है, उस सब दी चल रही है। कहते कि जीना झूठ है तो मरना सच है। हुण जिंदगी किसी दे कोल किन्नी है किन्नी नहीं कुछ पता नहीं, अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक गल पक्की है कि जाना जरूर है इस दुनिया तो, कि सब ने जाना है। आज तक कोई रहा ही नहीं, चाहे वो कोई राजा महाराजा सी या कोई बहुत बहुत वड्डा फकीर सी या वली पीर पैगंबर अवतार जिन्हां नूं असीं कहने आ रब्बी पुरश कहने आ, कोई भी नहीं रहा इस जहान दे उत्ते, है ना। सब ने एक ना एक दिन जाना ही है, यह गल पक्की है। तो इस करके जेकर जाना ही है, उस तो पहला असीं जिंदगी नूं क्यों ना सही ढंग दे नाल जी लीए। असीं खुशियां दा ना इंतज़ार करते हाँ अक्सर। असीं कहने हाँ कि अगर मैनूं नौकरी मिल जाए ना फिर मैं खुश हो जाऊँगा, अगर मेरा ब्याह हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊँगा, जेकर मेरे बच्चे हो जाण फिर मैं खुश हो जाऊँगा, जेकर मेरे बच्चे सैटल हो जाण फिर मैं खुश होवांगा, तो जेकर मेरा घर बन जाए फिर मैं खुश होवांगा। लेकिन खुशी इदा आती नहीं है कि कुछ भी जिंदगी दे विच हमेशा परफेक्ट नहीं हो जाता, साढ़े चाह दे नाल कुछ नहीं बन जाता, कुछ ना कुछ लाइफ दे विच अधूरापन रह ही जाता है, कमी कोई ना कोई रह ही जाती है। जेकर असी सोचांगे कि सारियां कमियां खत्म हो जाण फिर असी खुश होवांगे, तो फिर वो टाइम तो बहुत कितने मैनू नहीं लगता कि आएगा जिंदगी दे विच, क्योंकि कुछ भी जड़ा है वो पूरा नहीं हुंदा। कि आप गाना भी सुनिया है, वो शेर भी सुनिया है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो सब किते ना किते अधूरे हैगे ही हैगे ने, किते ना किते खालीपन जरूर हैगा। जेकर सानू बाहरों सब लगता है कि पूरा है, लेकिन अंदर कई बार इंसान दा मन खाली हुंदा, दिल खाली हुंदा। तो इस करके खुशियां दा इंतज़ार असी ना करिए, बल्कि जिद्दां दे भी हालात ने जो साढ़े आस पास है उस दे विच चाहे छोटी जी खुशी ही क्यों ना होए, उसनू लभ के उस दे नाल खुश होने की कोशिश करिए। कहिंदे कि मान लो कि तुसी समुद्र के किनारे खड़े हो, आस पास तुहाडे रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, खारा पानी है, और अचानक थोड़ी नज़र एक छोटे जे मोती दे उत्ते पैंदी है, तां ओह खुशी भी बहुत है खुश होने दे लई। उस मोती नू चुको, अपने हाथ दे विच लो, चाहे उसनू पिरो के गल दे विच पा लो, वो जिहड़ी छोटी जी खुशी है ना वो भी तुहानूं खुश कर सकती है। और बस कोशिश यही करनी है कि बेशक साढ़े हालात किहो जिहे ने, दुख तो सब दी जिंदगी दे विच हैगे ही ने जी, इक्को जिहे ने। किसी नूं थोड़े सानूं लगता है कि उहदी जिंदगी बैटर है साढ़े नालों, लेकिन कहिंदे कि किसी दे कोल बैठ के देखो तो फिर वह तुहानूं अपने दुख सुनाए, फिर तुहानूं लगेगा कि नहीं यार बराबर ही हैगे हाँ आपां, कि उसनों किस तरह का दुख है तो मैनू किस तरह का दुख है। तो इस करके खुशियां गमियां आंसू जिंदगी दे विच रहनी ने, इन्हां नू मिला के ही जिंदगी बनती है। बस असी कोशिश करनी है कि इन्हां गमां दे विचों इन्हां दुखां दे विचों छोटी जी भी खुशी मिले, तो उसनों गल नाल लगा के खुश होना है। आओ फिर इदां दे गीत सुनदे हां।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों

0: के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में

0: मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे MSME के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित

0: सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed.

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 9:30 बजन वाले ने। हुण पेश है प्रोग्राम खेड संसार। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे इंटरनेशनल पैरा आर्चर हरविंदर सिंह होरां दे नाल कीती मुलाकात। इन्हां दे नाल गलबात कर रहे ने बिरिंदर सिंह।
1: खेड संसार। खेड संसार प्रोग्राम सुनने वाले नूं बीरेंद्र दा नमस्कार। थोड़े दिन पहला ही चेक गणराज दे नोवे मेस्तो विच वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 खेडी गई, जिस विच भारतीय पैरा आर्चर्स ने धुम्मां पा दित्तियां। भारत ने 10 तमगे जिते, जिस विच 5 सोन, 3 चांदी ते 2 कांसे दे तमगे शामिल सन। पैरा आर्चर हरविंदर सिंह ने इस वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज विच कमाल कर दिता। उन्होंने 2 सोने दे ते 1 चांदी का तमगा जितया। अज दे खेड संसार प्रोग्राम च गल करांगे हरविंदर सिंह होरां दे जीवन ते उन्हां दे करियर ते उन्हां दी इस प्राप्ति बारे। सुनण वालियां लई दसदी है कि हरविंदर सिंह साडे देश दे ऐसे पैरा आर्चर ने जिन्हां ने पैरा ओलंपिक खेडां विच तीरअंदाजी विच सोन तमगा जितया सी ते ओ पहले इदां दे भारतीय खिडारी बने सन। 25 फरवरी

प्रोग्राम सरगमदा अगला नगमा पेश है फिल्म लोफर तो। आवाज़ आशा भोसले दी, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे, ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਭਵ ਤਾਰਿਣੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री

डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये देख लिया हूँ, बस गया बस गया। मूड नहीं है, घर रह भी जाना तो दिक्कत नहीं।
1: हाँ जी,
0: कई बार मैं मूड नहीं होता, काम होते रह भी जाना है, तो यही जी गल है। पर
1: अच्छा, चलो कोई नहीं। ते केड़ा गीत सुनाइए तुहानू अज?
0: गाना दादे मनमोहन वार थोड़ा।
1: बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश मैं पूरी करने जा रहे हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
0: ठीक है, बिल्कुल
1: थैंक
0: ओके।
1: यू जी, थैंक यू।

0: बिल्कुल जी, टच वुड नजर न लग जाए तोबा मेरी सरकार नु। गीत जय करे बबू मान साहब दी आवाज से फिक्ते प्रोग्राम चल रहे जी। सो गात ते मैं थोड़ा दोस्त अरुण थोड़े नाल पढ़िया होया। सो नंबर है जी साडा 0181 2342 171, यानी कि 0181 2342 171। सो यही नंबर डायल करके लगातार दोस्तों दी कॉल्स जिहड़ियां ने साढ़े तीन पहुँच रही, और दोस्त इस वेले प्रोग्राम सुन भी रहे हैं तो अपनी फरमाइशा भी साढ़े तीन पहुँचा रहे हैं। सो बिल्कुल जी, एक बार फिर फोन की रिंग जी बजनी शुरू हो गई है तो देखते कि दोस्त आए हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच।
1: धन्यवाद जी।
0: जी कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: मैं छिंदर सिंह वारवल पिंड मौजन जिला फालका तो जी।
0: हाँ जी वारवल साहब, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: बहुत बहुत ही बढ़िया जी।
0: चलो बढ़िया ही होने चाहिए है। ते किन्नी देर तो कॉल ट्राई कर रहे थी?
1: बहुत टाइम हो गया जी, 11 बजे तो लग गए हैं।
0: लगभग एक घंटे बाद जिहड़ा नंबर लग ही गया अपना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: सो चलो बहुत वधिया लग्या जी थोड़े नाल गलबात करके। तो किहड़े गीत की फरमाइश ने आए हो अज फिर?
1: हजारा सिंगर भी सदा दूजा विआह जी।
0: बिल्कुल ठीक है जी, रमते का दूजा विआह आपां करा देना हुणे। तो कॉल करन दे लई बहुत शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी।
0: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸਲੇਰਾ ਰੰਗ ਵੇ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਹਾਂ ਲੱਭਦੀ। ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਗਾਤ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਰੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ,
1: ਹੈਲੋ ਤਰੁਣ ਸਰ,
0: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਗਾਤ ਵਿੱਚ।
1: ਸਰ ਆਪਸੇ ਮਿਲਨੇ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲਗਤਾ ਹੈ ਸਰ?
0: सर देखिए, ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ पे, मैं आपके लिए बैठा हूँ और आपकी कॉल फिर भी लग गई है, आपने बीच में कोशिश नहीं छोड़ी।
1: मैं बोलता हूँ इंसान को कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे मैं कॉल कटिंग करूँ तो वैसे गेस्ट कॉल लगाना चाहिए, सब कॉल लगेगा।
0: बिल्कुल सही बात है
1: सर, मुझे है ना ये बबू मान सर का मुझे गाना सुना दो, मैं सॉन्ग आ जाए ना अलग सॉन्ग का मैं फरमाइश किया हूँ। और सर मैं आपको ये चीज मैं बोलता हूँ सर, मैं आपके लिए मैं बोलता हूँ और सभी सुनने वाले को, मीठी बोली बोल के और ना सताओ।
0: वाह जी वाह,
1: अपना दिल बहलाने के लिए संतोष बेचारा के दिल से तीर मत चलाओ।
0: क्या बात है, हम कहाँ तीर चलाते हैं जनाब।
1: मैं बोलता हूँ, दिल ने जिसका नाम लिया मैंने उसका दामन थाम लिया।
0: वाह जी वाह,
1: जब जब दिल पे दर्द हुआ तो सर जी मैं तो सिर्फ आपका नाम लिया, मैं कुछ नहीं किया आपका।
0: क्या बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन सा गाना सुनाऊं आज
1: सर? बबू मान का मैं अलग सॉन्ग, मैं सखी के नखनू ये वाले सुना दो आप।
0: बिल्कुल ठीक है जी, पक्की कणकणू आग लग जाऊंगी गीत मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर, बहुत थैंक यू
0: जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, जेकर तुसी भी चाहते प्रोग्राम का हिस्सा बनना था जी, 0181 2342 171 यानी कि 0182342171 ये साडा नंबर है जी। ये नंबर तुसी डायल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि हाले भी जेकर थोड़ी कॉल नहीं लगी तो तुसी लगा सकते हो। लगभग 19 मिनट का समा हजे भी तुहाडा ते मेरा जिहड़ा है वो बनया होया। सो इस प्रोग्राम के अगले कॉलर तो उसकी कॉल दे उड़ीक करते हुए आओ सुनते हैं प्यारा जिहा गीत बबू मान साहब की आवाज़ के।

गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, राम नाम मन लागा, जम ल जाए कर पागा। गुरबाणी दी इस पावन पंक्ति तो पाव, सर्व रख्या लई रामकार या प्रभु रख तो है, पर शब्द चौंकी तो पाव गुरु साहबान वालों बद्दी मर्यादा दे अनुसारी होके कीर्तन करना है। इस पुरातन वडमुली अते टकसाली परंपरा नू शब्द चौंकी आख्या जांदा है। सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब विखे इसे पुरातन परंपरा मुताबक कीर्तन दा प्रवाह चलता है। पड़ताल शब्द चौंकी दा एक सर्वोत्तम अंग है, जिसका अर्थ है किसे शब्द नू ताल बदल बदल के गायन करना। ये परिपाटी चौथी पातशाही साहेब श्री गुरु रामदास जी ने तोरी। आप जी दियां सब तो वद पड़तालां साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब विच दर्ज हन। सरवण करदे हां भाई हरचंद सिंह रागी ते उन्हां दे जत्थे वलों गायन कीती ये पड़ताल। प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी, अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी।

0: प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुनगनी अनिक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरचंद सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। शब्द चौंकी दी इसे पुरातन परंपरा बाबत आओ सुनदे हां तीरथ सिंह ढिल्लों होरां पासों वार्ता। गुरमत संगीत विच शब्द चौंकी दा महत्व।
1: गुरबाणी कीर्तन दे प्रमुख विद्वानां अनुसार कीर्तन गायन विधि नूं शब्द चौंकी भी आख्या जांदा है। जिवें चौंकी दे

चार स्तंभ जां पावे हुंदे हन, उसे तरह शब्द चौंकी भी चार पाव्यां जां स्तंभां उत्ते टिकी हुई है। ये चार पावे इस प्रकार हन। पहला है शान वजाउणा। साजा नाल शान वजाउण करके संगीतक माहौल सिरजिया जांदा है। इस नाल कीर्तन प्रेमियां विच साचे नाम की भूख जागदी है। सुर साज वजाउण वाला लहरा वजाउंदा है, जिसनूं भारतीय संगीत विच नगमा भी आख्या जांदा है। दूसरा स्तंभ है विलंबत लय विच कुछ मिनट मंगलाचरण अर्थात गुरु उपमा करनी। इस दे अंतम बोल हुंदे हन गुरु गरीबनवाज, गुरु गरीबनवाज, गुरु गरीबनवाज। संगीतक शब्दावली विच इस नूं तिहाई आख्या जांदा है। मंगलाचरण चार ताल जां एक ताल ठेके विच डंडौत तो बाद त्रुपद, पड़ताल, ख्याल आदि वख वख शैलियां नूं वख वख तालां अधीन रागां विच गायन करन दी गुरमर्यादा है। तीसरा स्तंभ है समय मुताबक रागां दा गायन करना, जिवें बहुत तड़के राग प्रभाती, फिर आसा, फिर भैरवी, फिर बिलावल, दोपहर वेले राग सारंग अते होर राग, शाम नूं श्री राग इत्यादि अते रात नूं कल्याण, कानड़ा, केदारा, जैजावंती अते होर अनेका रागां दा गायन उस समय दी चौंकी मुताबक कीता जांदा है। ते अंतम चौंकी है पुरातन बंदशां, धुनियां अते रीतां। जिहड़ियां पुरातन बंदशां अते रीतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु साहिबान ने अंकित कीतियां हन, उन्हां दा मर्यादा मुताबक सरोदी गायन जिवें वार, पौड़ी, छंत, सलोक, घोड़ियां, अलहुणियां, करहले अते रामकली सद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भारतीय शास्त्रीय संगीत दा ओ बेशकीमती खजाना है, जिस विच भारतीय संगीत समग्र रूप विच समाया होया है। अते कोई अजिही संगीतक वनगी नहीं जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच ना होवे। कीर्तन समाप्ति उत्ते चौकी नाल संबंधित समय दे राग अनुसार कोई शलोक गायन करन तो बाद वार दी पौड़ी गायन कीती जांदी है। गुरमत संगीत दे कुछ विद्वानां दी राय है कि गुरमत संगीत विच चार कीर्तनी सिंघां दे जथे नूं चौंकी कहा जांदा है। महान कोश दे प्रकांड लेखक भाई कान सिंह नाभा मुताबक चौंकी तो भाव पहला बयान कीते गए चार पावे जां कीर्तन दे चार अंग ही हन, जिहड़े कीर्तनकार ने कीर्तन गायन विच मुकम्मल करने हुंदे हन, तदों ही संपूर्ण कीर्तन चौंकी बनदी है। गुरु साहिबान दे वेले तो ही सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर विच कीर्तन चौंकियां दे अनुसारी हो के रागी जथे कीर्तन गायन करदे सन। दुख दी गल यह है कि अजकल ये महान परंपरा अलोप होण दे कंढे ते है। गुरमत संगीत विच चौंकियां दी गिणती बारे कुछ विचारधारक मतभेद कायम हन। भाई कान सिंह नाभा मुताबक चौंकियां दी गिणती चार, संत कवि भाई वीर सिंह जी अनुसार पंज, अते श्री अकाल तख्त साहब दे साबका जथेदार स्वर्गी सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह जी अनुसार 15 दसी गई है। पर इस वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर विच 9 शब्द चौकियां लगदियां हन, जिहड़ियां इस प्रकार हन। पहली चौकी है तीन पहरे दी चौकी। इस चौकी दा प्रचलन केवल ते केवल श्री हरिमंदर साहब अमृतसर विखे ही है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा श्याम सिंह जी 125 साल दी वडेरी उम्र तक निरंतर सरंदे साज नाल तीन पहरे दी चौकी दा गायन करदे रहे, निरंतर कीर्तन कीता। कदे भी मीह जावे, हनेरी जावे, ये परंपरा टुटन नहीं दिती। ये चौकी श्री दरबार साहब दे किवाड़ खुलण तो पहला रात दे तीजे पहर विच लाई जांदी है। दूसरी है आसा दी वार दी चौकी। जिहा कि इस दे नां तो ही स्पष्ट है कि ये आसा राग उत्ते आधारित है। टुंडे असराजे की धुनी विच आसा दी वार गाउण दा हुक्म है, पर ये प्रचलन

0: सगल जगत चंग आईया बुरे आईया वाचे धर्म अधूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल पढ़ के अरदासिया सिंह गुरु सनमुख समाप्ति दी अरदास करदा है। पुरातन समय रागी जथे इना कीर्तन चौकियां नू शुद्ध परंपरा मुताबक गायन करदे सन क्योंकि ओ आप उच्च कोटि दे माहिर अते प्रवीण ते समर्थ रागी हुंदे सन। इस बारे श्री अकाल तख्त साहब दे तत्काली सिंह साहब सचखंड वासी ज्ञानी कृपाल सिंह जी अपनी एक लिखत विच लिखते हैं कि पुरातन समय दौरान हरेक चौकी दे आरंभ विच अलाप सहित पूरी शिद्दत नाल राग विच रागी कीर्तन गायन करदे सन अते रागी सिंह राग दा स्वरूप प्रगट करके रख दिंदे सन। इस उपरंत वह बाकी दे शब्द सरल तरीके नाल पढ़दे सन ताकि आम संगत भी इन्हां दा आनंद माण सके। इहो वजह है कि पुरातन समयां दौरान देश दे वड्डे वड्डे संगीतकार श्री हरिमंदर साहब दे रागियां अते रबाबियां नाल मुकाबला करन तो पहलां 100 वार सोचदे सन पर अजकल अजिहा नहीं है। सो अंत विच इह सारी विचार दा तत्सार इह है कि इह कीर्तन चौकियां गुरमत संगीत दी सच्ची सुची महानतम अते सर्वोत्तम परंपरा दा प्रतख प्रमाण जागदा स्वरूप अते साख्यात दर्शन दिदारे हन। अज लोड़ है इस महान विरसे नूं संभालण दी ताकि असी गुरु मर्यादा दे अनुसारी हो के कीर्तन करिए ते सुनिए अते गुरु कीआं खुशियां दे अते मेहरां दे पात्र बन के अपने जीवन नूं सफला करिए।
1: गुरमत संगीत विच शब्द चौंकी दा महत्व ये वार्ता सुना रहे सन तीरथ सिंह ढिल्लों। हरेक धर्म विच प्रभु कीर्ति गायन करन दी आपो अपनी विधा है पर सिख धर्म विच गुरबाणी कीर्तन नूं प्रधानता दित्ती गई है। गुरुवाक है कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए त्याना आप तरै सगले कुल तारे हर दरगह पत्स्यों जायदा। जगत गुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी कीर्तन परंपरा दे मोढ़ी हैं। आप तो उपरंत बाकी गुरु साहबान ने भी इस परंपरा नू बाखूबी अगे तोरिया। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने भारतीय संगीत नू एक नवा राग मांझ ते एक असलों ही नवा साज सारंदा दिता। साहेब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ढाडी राग की परंपरा तोरी ते दसम पिता साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने ताऊ स्वर्गा विलखण साज ईजाद किया ते अनेकां बंदिशां ख्याल अते तराने भारतीय संगीत नू बख्शे। सरवण करदे आं भाई जगीर सिंह ते उनां दे रागी जत्थे वलों गायन किया होया ये शब्द दीनन की प्रतिपाल करै नित संत उबार गनी मन गारै।

जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्योर निर्वैर निरंतर सृष्टि सगल उत्तरी नाम लेत्रो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जन काद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग पाताल पुरे जयकार तुन कब जन कल वखान्यो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग तै मान्यो पाताल पुरे जयकार तुन कब जन कल वखान्यो हर नाम रसिक।

0: गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जेंच करवे कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चुरे सदा गुर संग रहंतो दूर बाबरू रंगरे गुर नानक जस गायो कब कलस जस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कलस जस नानक गुर कट कट सहज समायो
1: कीरत करन शरण मन मोहन जोहन पाप बेदारन को हर तारन तरन समरथ सबे बेद कुलह समूह उदारन सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम संग रसना संग लो हो सो काज अल

न कोट जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौं।

0: लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का हई त पांडे कहत ना तुटे ना मन लगे ना जले ना जाय तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौंकड़ मुड़न आया बह चौंके पाया सिखा कर चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थया ओम आओ चढ़ पाया अभी तक गया महला पहला
1: लख चोरिया लख यारियां लख कुड़िया लख गाल लख ठगियां पहनावियां रात ने सिना तक पहु कतिये बमन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए कोहे प्राणा छुट गए।

महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू आपने दरों घरों सिक्खी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सोब भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देगा हाजर है दार परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।